नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी आपके साथ और हम इस वक्त लाइव आ चुके हैं स्टूडियोज़ में। कैंगरू पॉइंट, बाहर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है और मैं हूँ रजनी आपके साथ। बहुत सारे खबरें आपको मैं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि जन्माष्टमी हुआ है कल रात को। जाहिर है आप लोगों ने बहुत सारे त्यौहार जो मनाते आते हैं, जन्माष्टमी को भी बहुत धूमधाम से मनाए होंगे आप लोग। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी के। और वो भी नहीं, इस हफ्ते मैं बहुत एक ख़ास बात शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ और वो है, इस प्रोग्राम को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, यानी कि समर्पित करना चाहती हूँ बहुत ख़ास बहुत करीब के हमारे मनमोहन धीमन जी, जो हमारे समधी थे और बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन भी था। मनमोहन जो मैं उनको शुरुआत से मैं गुरुजी कहती थी, तो वो इस वक्त हमें सब छोड़ के चले गए और इसके लिए इस हफ्ते का प्रोग्राम मैं उनके नाम पे समर्पित करना चाहती हूँ। तो जाहिर है आप लोगों ने जो शिवा के भजन सुन चुके हैं इससे पहले, वो बहुत बहुत गहरा मतलब था और आपको जाहिर है आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों, जो अगले गाना जो मैं आपको सुनाना जा रही हूँ और वो भी एक बहुत बहुत ख़ास राग है और ये ख़ास दौर मनमोहन धीमन के लिए

जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रजनी आपके साथ 98.1 शेयरिंग द वर्ल्ड विद यू। और हम लाइव आ चुके हैं स्टूडियोज़ में आज। और जैसे मैं कह रही थी इससे पहले कि हम ख़ास तौर से इस हफ्ते का प्रोग्राम हम समर्पित करना चाहते हैं मनमोहन दिमन जी के लिए, जो मैं उसको हमेशा से शुरुआत से ही मैं गुरु जी कहती थी। और नमस्कार सत श्री अकाल केमचो गणी खम्मा अस्सलाम वालेकुम। हमारे सारे सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। और जिन्होंने ट्यून किए हैं हमारे साथ एक घंटा के लिए 10 बजे तक, ज़रूर बैठे रहिए और सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे अच्छे गाने मैं चुन के लाई हूँ आपके लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। और जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए हर लोगों के लिए दुनिया भर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग अगले हफ्ते भी गणेश चतुर्थी को मनाएंगे, 14th of September। और जाहिर है आप सब लोग भी हिस्सा लेंगे इसमें से। और ध्यान से रहिए, अपने ख्याल रखिए, और ख़ास तौर से अपने आसपास के जितने सारे लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, कलीग्स, सबको ख्याल रखिए। तो दोस्तों, हम लोग जैसे मैं मनमोहन जी के बारे में बात करने जा रही हूँ, एक छोटी सी झलक मनमोहन जी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कनेक्शन जो था, समधी थे हमारे, और बहुत गहरा कनेक्शन था हमारा शुरुआत से, जब मैंने उनसे पहली दफ़ा बात की थी फ़ोन पे, और वो भी खाने के बारे में, यानी कि वी कनेक्टेड अबाउट फूड। ये तो 20 साल पहले की बात है। और वो ही नहीं, मनमोहन जी के नाम का मतलब क्या होता है, फॉर दोज ऑफ़ यू हु डोंट अंडरस्टैंड द नेम, द मीनिंग ऑफ हिज नेम, वेरी वेरी क्लोज पर्सन हु वॉज रिलेटेड टू अस, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड द फादर इन लॉ ऑफ माई डॉटर। तो उनका नाम का मतलब है द वन हु कैप्टिवेट्स द माइंड, ऑल्सो द विनर ऑफ हार्ट्स एंड एनचांटिंग। जी हाँ, ये बिल्कुल मनमोहन जी के बारे में मैं कह सकती हूँ कि परफेक्ट, इट्स वेरी वेरी एप्ट। जो थे उन्होंने सबको खिलाते थे, पिलाते थे, बहुत शौक से, बहुत खुशी से खाना बनाते थे, और उनको हमेशा खुशी से, जितने सारे लोग घर में आते थे उनको बिठा के फ्रेश ऑन द स्पॉट तंदूर की रोटी बना के खिलाते थे। और वो जो तंदूर उन्होंने बनाया था घर पर, उनके अपने हाथों से बनाया था, और ये था हमारा कनेक्शन। ही वॉज़ द हार्ट ऑफ द हाउस, हार्ट ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ़ द फैमिली। लेकिन हमारे सब के दिलों में इतना बड़ा जगह बना के गए, हमें छोड़ के चले गए। तो आपने सही नहीं किया मनमोहन जी, गुरु जी, और बड़ा छक्का मार के आप चले गए। तो लेकिन हमेशा हम आपको याद रखेंगे, हर वक्त, हर लम्हा। और उनको एक और बहुत बड़ा शौक़ था कि दुनिया घूमे फिरे फैमिली के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये था मनमोहन दिमन। और हम फैमिली के साथ हम खड़े हैं इन दीज हार्ड टाइम्स, लेकिन फिर भी मनमोहन जी के लिए ख़ास तौर से ये गाना है उनके लिए। तो दोस्तों, सुनते रहिए, बने रहिए 98.1 शेयरिंग द वर्ल्ड विद यू। मैं हूँ रजनी आपके साथ 10 बजे तक। सर,

जी हाँ दोस्तों, ज़ाहिर है आपको ये गाना पसंद आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड जिन्होंने इस वक्त ही ट्यून किए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि गणेश चतुर्थी भी है ऑन द 14th of September। इट्स अ हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। और लॉर्ड गणेश इज़ कंसिडर्ड द लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, सक्सेस, इंटेलिजेंस। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे विद न्यू बिगिनिंग्स और सक्सेस, इंटेलिजेंस, सेफ्टी एंड सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ लव अराउंड द वर्ल्ड, शेयरिंग द वर्ल्ड विद यू। 98.1 रजनी, मैं हूँ आपके साथ। और जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त 9:25 हो रहा है इस वक्त, और बाहर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है कैंगरू पॉइंट में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत प्यारा गाना

जी हाँ दोस्तों, फैंटास्टिक गाना था ये, फ्यूजन एड शीरन और हमारी हमारी अपनी श्रिया घोषाल की आवाज़ में। दोस्तों 12 सितंबर एट 9:15 देर इज़ गोइंग टू बी अ वॉक फ्रॉम द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वॉक, और ये होने जा रहा है एट 96 वेदांता ड्राइव, विच इज़ बिहाइंड नंबर 2 पॉपी क्रेसेंट, स्प्रिंगफील्ड लेक्स में। और आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इट्स अ गाइडेड ग्रुप वॉक अराउंड द वेदांता सेंटर एंड देयर विल बी लाइट रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइडेड। जी हाँ दोस्ता, यू आर जब भी आप वहाँ वेदांता सेंटर में जाएंगे तो आप लोग माँ श्रद्धा के किचन में भी आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कांटेक्ट करना है, कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस, अगर कुछ सवाल है, आप श्यामदास को फ़ोन कर सकते हैं 0412031301 पे। दिस इज़ हैपनिंग ऑन द 12th of September अगले हफ्ते, और ज़रूर जाइए। दिस इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वॉक इन कोलैबोरेशन एंड होस्टेड बाय द पावर ऑफ अस सुसाइड प्रिवेंशन नेटवर्क टुगेदर विद वेदांता सेंटर ब्रिस्बेन इन एसोसिएशन विद वेस्ली मिशन। 9:40 होने को आ रहा है, लेकिन दोस्तों एक और प्यारा गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, तो ये उनका शायद आखिरी गाना था वो जब हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत प्यारा गाना। और ये था सलीम सुलेमान के संगीत और लिरिक्स।

जिन्होंने रिन्यू किए हमारे मेंबरशिप्स को 4EB रेडियो स्टेशन के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है। और जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर फ़ोन उठाइए एंड कंटिन्यू योर सब्सक्रिप्शन ओवर द फ़ोन बाय मेकिंग योर पेमेंट दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, ये है अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में, अरिजीत सिंह और प्रीतम चक्रवर्ती की आवाज़ के साथ, और ये था फिल्म छिछोरी, जो सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म था। लेकिन ख़ास खबर ये है कि 6 साल के बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस वापस खुला हो गया है, और उम्मीद करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। और कीप वॉचिंग द स्पेस।

जी हाँ दोस्तों, बस 10 मिनट तकरीबन हमारा वक्त आ चुका है जाने के लिए और आपसे अलविदा कहने के लिए. लेकिन दोस्तों, इफ़ यू हैव नॉट रिन्यूड योर मेंबरशिप हमारे ग्रुप के लिए जो FOEB में है, बहुत छोटी सी ग्रुप है और हम गुजारिश करते हैं कि आप रिन्यू कर लीजिए जल्द से जल्द एंड कंटिन्यू सपोर्टिंग आर ग्रुप ऑन FOEB रेडियो स्टेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ आपके साथ देना चाहते हैं जैसे हम इतने साल से देते आए हैं, 40 साल के ऊपर हैं, और जाहिर है आप लोग हमारे साथ देंगे अगले 100 साल के लिए. तो दोस्तों, बस एक और बहुत प्यारा गाना, एंड इसके लिए सुनते रहिए, बने रहिए रजनी के साथ 98.1, शेयरिंग द वर्ल्ड विद यू.

जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल गाना तो ये सोनू निगम ने आवाज़ दी थी और इस गाने को रीमेक किया है श्री रामा और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।

हमारा जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों. अगले हफ्ते ज़रूर इसी वक्त इसी स्टेशन पर और मुलाकात फिर होगी. लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए और खैरियत से रहिए. इस वक्त अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे.